0: चलथल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। चलथल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल चलथल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: Safo Travel, auto protected.
2: Lester Miller is back.
3: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
2: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
3: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
3: Arts Council England.
4: Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध मन्ने सगल पौन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

ना के हाँ हाँ और सुनो और सुनो। हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो। हाँ।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara,
2: nazar se nazar.
1: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225.
7: आपके सामने एक रेड बटन है,
8: दबा दिया।
7: नहीं दबाना।
9: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार। Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
11: पता नहीं ऐसे dangerous situations में मैं automatically आके कैसे आ जाता।
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Get ready for the ultimate test of courage. Season 15, hosted by action maestro Rohit Shetty.
2: Welcome to Durga Capital, Cape Town.
1: Bigger stunts, tougher challenges, and fearless contestants battling it out like never before. Don't miss the adrenaline rush. Starting this July on Colors TV. Are you ready to face your fears?
3: Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
4: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
5: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
4: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
5: दिल तो टूट पे किया,
4: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
6: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
4: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
7: The Ravi Sharma Show with Ravi Sharma on Leica Radio Midlands.

0: Good morning. स्वागत है, स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन प्रोग्राम में, रवि शर्मा शो। रवि शर्मा दैट्स माय नेम और बहन भाइयों, कार्यक्रम मनोरंजन लेकर मैं दोपहर बाद एक बजे तक आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। थैंक्स टू काजल, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और अब अपनी बारी है, पूरी तैयारी है, जेरे बहस है आज गमों की ज्यादती। उर्दू घोल के पिला रहा हूं भाई, जेरे बहस है मुद्दा, है विषय है बहस का आज, गमों की ज्यादती। गम बहुत ज्यादा हो गए, दुखों का बढ़ना आज हमारे डिस्कशंस का टॉपिक है। मसला बहुत अहम है, जरा गौर करेंगे। जमहूरियत के दौर में ये इजहार ताकत जो कर सकी ना वो कमजोर करेंगे। खामोशियों का दर्स कहीं और जाके दो, नफरत है खामोशी से हमें, हम तो शोर करेंगे। और देख बता दूं आपको, उल्टी है खोपड़ी, जितना मना करेंगे हम और करेंगे। उल्टी है खोपड़ी, जितना मना करेंगे हम और करेंगे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Coventry on DAB.

0: मैं यहाँ स्टूडियो में। कहाँ हैं आप? जुड़ जाइए हमारे साथ। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हमने प्रोग्राम शुरू कर लिया है। और बहनों भाइयों, दो गीत जो हमने आपको परोसे। पहला था कि यार की खबर मिल गई। खबर तो मिल गई, लेकिन यार को अपनी खबर नहीं है। अब वो जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है, मैं यहाँ हूँ। हाँ भाई, तू वहां है, तेरी खबर मिल गई है। मोहम्मद रफी और लता जी गा रहे थे ये गीत फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने। और इससे पहले यार की खबर मिल गई, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म राम बलराम। तो साहब दो गीत, आशा भोसले किशोर कुमार और फिर रफी साहब और लता जी। तो भाई ये गीत सुनकर के मुझे पूरा यकीन है कि आप संतुष्ट हुए होंगे। आज बुधवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 15 तारीख हो गई साहब, जिसका इंतजार था बहुत सारे लोगों को। आज शाम को भिड़ंत होने वाली है भाई फुटबॉल में। आज टीवी के सामने चिपक के बैठेंगे लोग। और ये भी बता दूं कि भाई हमारे यहाँ से भी स्कोर के आंकड़े बार बार बताए जाएंगे। मैच की स्थिति, मैदान से गोल मटोल जो भी होगा भाई, उसकी खबर देते रहेंगे हम आपको।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK टुडे गिविंग 128.4 रुपीज इन इंडियन करेंसी फॉर वन पाउंड। बाय यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। दिस इज द Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: रैकलो वाले बता रहे हैं कि फीफा में आज क्या हो रहा है। अरे साहब, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन क्या होगा रिजल्ट ये तो शाम को पता चलेगा। 8 बजे शुरू होगा मैच इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में कौन सी टीम एंटर करेगी, किसकी भिड़ंत होगी स्पेन के साथ। आज कोई कह रहा था कि जी इंग्लैंड और स्पेन का मैच होने वाला है। मैंने वो आज नहीं, वो 19 तारीख को होगा, इंतजार कीजिए। भाई रैकलो वाले कह रहे हैं डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस with Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Start

0: visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: आपके सामने एक रेड बटन है.
2: दबा दिया.
1: नहीं दबाना था.
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
8: The Janan and J. Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
11: ये है लाइका गोल्ड.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भन भाइयों, गीत संगीत शुरू रहते हुए हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि अब खबरों का जिक्र करें तो भाई खेलों की खबरें छाई हुई हैं। एक तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे इंटरनेशनल कल जीत लिया। शुभमन गिल की शानदार पारी की बदौलत मिली पहली जीत, शानदार जीत। वनडे इंटरनेशनल था भाई, 50 ओवर का मैच, 4 ओवर पहले ही भारत ने अपने नाम कर लिया और इस तरह से 1-0 से आगे बढ़ गए। अब दूसरे मुकाबले फुटबॉल में जो चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के, फ्रांस पर जीत के बाद जश्न में डूबे स्पेन के फैंस, लेकिन भाई बहुत निराश और डिसअपॉइंट हुए फ्रांस के लोग। कल तो फ्रांस का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, अगर जीत जाते तो डबल सेलिब्रेशन होता भाई उनका, वो एक नेशनल डे के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन हार जीत तो खेल में चलती है साहब। इसके अलावा, खेलों के अलावा जो और खबरें हैं फिर वो जंगों की, युद्धों की, समझौतों की। Let's find out what else we have in the news. Time to go to the news.
0: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ईरानी फौज ने बयान में दावा किया है कि सिस्तान बलूचिस्तान के बुमपर क्षेत्र में एक फौजी हवाई अड्डे पर हुए अमरीकी हमले में 7 लोग मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। सेना के जनसंपर्क विभाग के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक आज सुबह अमेरिकी फौज ने बमपुर में ईरानी थल सेना की बैरक के रेजिडेंशियल इलाके को करीब 13 मिसाइलों से निशाना बनाया है। बयान में बताया गया है कि ईरान शहर की 388वीं ब्रिगेड के 7 जवानों की मौत हो गई है, जिनमें सेवारत यानी सर्विस में लगे और जरूरी फौजी सेवा की कर रहे जवान शामिल थे। वहीं जख्मियों का इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इससे पहले ईरानी मीडिया ने फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बमपुर समेत कई तटीय शहरों में यानी किनारे वाले शहर में विस्फोट की खबरें दी थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया है। IRGC ने कहा है कि उसने कुवैत में मिसाइल और एयर डिफेंस राडार और मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिणी ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने जो अटैक किया है, इनमें होविज शहर में एक गेहूं खरीद गोदाम और इलम के देहलोरान में एक मिनरल वाटर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। भारत से आने वाली खबरों में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक के अनशन के मामले में केंद्र से जवाब मांगा है। सोनम वांगचुक भाई ये हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर है और वो कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है उनकी, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए सरकार से तुरंत दखल की मांग की है और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि वांगचुक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बैनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की हिमायत की है। उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भी फोन पर बात करके उनकी सेहत का हाल जाना है। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आकर के उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट देश में आई भीषण बाढ़ के बीच स्कूली बोर्ड की परीक्षाओं को, एग्जाम्स को जारी रखने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ANM एहसानुल हक मिलन ने HSC की परीक्षाओं के बारे में और परीक्षार्थियों के बारे में अपनी निजी यानी प्राइवेट टिप्पणियों से किसी को आहत होने पर खेद जताया है कि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने ये कहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के सामने शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट जल्दी सावर, बरिशाल, कुमिला, नारायणगंज, जशोर और बोगरा जैसे शहरों में फैल चुका है। भारत में भाई बहुत सारे एयरपोर्ट हैं और उन सभी एयरपोर्ट्स में एक कंपटीशन चलता है कि कौन अच्छी सेवाएं दे रहा है, कौन ज्यादा साफ सुथरा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स में मध्य प्रदेश के खुजराहो हवाई अड्डे ने देश में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वहीं राजधानी भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर रहा। बताते हैं कि भाई सभी एयरपोर्ट्स को अच्छी सेवाएं देने के लिए एक कंपटीशन का सामना करना होता है। दिग्गज अमरीकी टेक कंपनी IBM को अपने शेयरों में जबरदस्त गिरावट की वजह से एक ही दिन में $70 अरब का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि IBM के जो CEO हैं वो अरविंद कृष्णा हैं और भारतीय मूल के हैं। इन्होंने इन्वेस्टर्स को लिखे एक पत्र में कहा है कि भाई हमसे चूक हुई है, हम खुद को बदलने और तेजी से आगे बढ़ने में नाकाम रहे हैं, लेकिन अब अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। भारतीय मूल के ही इंडियन ओरिजिन के अंतरिक्ष यात्री स्पेस ट्रेवलर अनिल मेनन नासा मिशन पर इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए हैं। स्पेस में जो स्टेशन है इंटरनेशनल स्टेशन, वहां पहुंच गए भाई नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और रूस के दो कॉस्मोनॉट सोयूज MS-29 स्पेस शटल से आज सुबह सुबह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे हैं। ऊपर ही ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, क्या बात है।

0: अमेरिका और ईरान के बीच समझौतों की भाई वो समझौते की जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में अब ईरान की ओर से एक बयान आया है और बयान ये है कि इस्लामाबाद समझौते जैसी कोई चीज अब नहीं है, बाकी नहीं है। सेलिब्रेशन हो गए, क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन उसके बाद ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों पर अमेरिका के नए हमलों और सेंटकॉम की ओर से ईरान के साउथ हिस्से की नौ सैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू करने के ऐलान के बाद अब ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि तेहरान और अमेरिका के बीच बनी समझ की बुनियादी रूपरेखा पूरी तरह टूट चुकी है और इस्लामाबाद समझौते जैसी कोई चीज अब बाकी नहीं रही है। ये थी आज की खास खास खबरें, समाचार समाप्त हुए।
1: ये है Like Her Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।
0: खबरें हो गई, सूचनाएं समाचार हो गए, अब फिर से लौट आइए संगीत की दुनिया में। शर्मा जी बहुत काम हो गया, गीत लगाइए और थोड़ा आराम फरमाइए। कुछ लोग काम करते करते थकते नहीं है ना, उन पर आज चिंतन करेंगे, कैसे इतनी लगन से काम करते हैं लोग।

0: सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे? वो कहते हैं जी मैं तो होती आ रहा हूँ, पैसे अपने घरवालों से पूछ लो।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: और लीजिए साहब, साउथ होल ट्रेवल वाले जो बात याद दिला रहे हैं, कई दिनों से हम उसको फिर दोहरा रहे हैं। साउथ होल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ होल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410। डोंट फॉरगेट दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.

ऑल द वे फ्रॉम कुरुक्षेत्र, फरमाइश सौरभ चौधरी की। कहते हैं हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कभी तशरीफ लाइए और ये गीत सुनवाइए, यहीं बैठे सुनवा देंगे भाई, कुरुक्षेत्र के दर्शन करवा देंगे।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में लाइका रेडियो नेटवर्क पर। मैं रवि शर्मा, मैं मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रस्तुत करता हूं आज का विचार, थॉट फॉर द डे, जिसे हम चिंतन कहते हैं। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं रेडिंग से श्री अनिल वर्मा का भेजा आलेख। अनिल जी, आप आजकल बड़ी सात्विक विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में खूब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन आपने आज का जो विचार भेजा है वो समर्पण के प्रति है, निष्ठा के प्रति, काम करने में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी मोटिवेशन चाहिए। सुनते हैं आज का विचार यानी चिंतन।

कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता, और कुछ काम करवाने वाले शिकायत करते हैं कि हमारी लेबर, हमारे नौकर चाकर, हमारा स्टाफ बहुत निकम्मा है, काम पे ध्यान नहीं देता, लेजी हैं, मन लगा के काम नहीं करते। ऐसे ही एक सेठ बार बार अपने नौकर बदलता, दुकान पर जो सेल्समैन उसने रखे थे कई बदल के देखे, कोई भी ढंग से काम नहीं करता था। सेठ कभी डांटता, फटकारता, झिड़कता, कभी लालच देता, लेकिन जो भी लड़का वो रखता काम करने के लिए सेल्समैन के रूप में अपनी दुकान में, वो वैसा ही निकलता। बहुत उसने बदल के देखे, फिर आखिर में एक और नौकर लगाया उसने। उसे लगता था ये भी काम ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि सेठ कभी कभी झिड़कता था तो वो पुट ऑफ हो जाते थे। सेठ ने ये बात अपने गुरुजी से, एक महात्मा जी से कही, क्या करूं महाराज जी, मैं बूढ़ा हो चला हूं, काम नहीं होता, और कोई ना नौकर जो है वो काम का नहीं निकलता, 8-10 नौकर बदल चुका हूं, अब ये लड़का आया है, ईमानदार तो है लेकिन उतना चुस्त नहीं है। गुरुजी ने कहा इसे मेरे पास भेजना। सेठ जी ने कहा गुरुजी के लिए भोजन लेके जाओ और दर्शन करके आओ। लड़का गया, बड़े प्रेम से महाराज जी को भोजन कराया, तो गुरुजी ने कहा जानते हो बेटा, तुम जिसके यहां काम करते हो ना, वो कभी कभी डांट पड़ते होंगे, फटकारते होंगे तुम्हें, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सच महाराज जी?

लेकिन मैं सारा कारोबार मेहनत ये करता है, चलाता ही है कामकाज को, कामकाज बढ़ रहा है, तो मैं सोचता हूं इसके नाम कर दूं ताकि कल को मैं ना रहूं। तो ये काम को अच्छी तरह समझ लेगा, संभाल लेगा, चला लेगा, जीवन बन जाएगा इसका। महाराज जी ने ये बात कही तो लड़के के पांव से तो जैसे जमीन निकल गई, हैरान हो गया। कहता डांटते ऐसे हैं जैसे बाबूजी यानी मेरे पिताजी डांटते हो, शायद इसीलिए डांटते हैं कि वो मुझे अपना मान बैठे हैं। सेठ जी ने कहा देखो बेटा ये बात अभी किसी को मत बताना, और सेठ जी पर भी ये जाहिर मत होने देना कि तुम्हें पता है। उन्होंने मुझे बड़े कॉन्फिडेंस में ये बात बताई है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे समय पर आने पर पता चल जाएगा, अभी मत कहना कि आपको पता है। बच्चा आया, आकर के काम में जुट गया। अब वो सेठ जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था, जब वो डांटते फटकारते कुछ कहते तो मुस्कुरा करके काम में जुटा रहता। सेठ जी ने सोचा क्या हो गया इसको, अब वो ज्यादा लगन से काम करता भाग भाग के। कभी कभी सोचता कारोबार बढ़ता है तो मेरा ही फायदा है, अंत में तो सब कुछ मेरा ही है ना, और सेठ जी भी कितना प्यार करते हैं मुझे, इनकी बुढ़ापे में सेवा करूं क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। अब साहब वो सेठ जी को और सेठानी को खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता, घर को साफ सुथरा रखता, दुकान को चमका के रखता, सामान का पूरा ख्याल रखता, व्यापार बढ़ने लगा। सेठ सोचता है ये तो लड़का नहीं है, वरदान है, मेहमान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अपनी संतान है। सेठ जी उस पर अब सचमुच में स्नेह करने लगे, और जब बहुत बीमार होकर के सेठ जी को लगा कि अब दुनिया से जाने का समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने सचमुच वो कारोबार उस लड़के के नाम कर दिया। बच्चे की आंखों में आंसू थे। लड़के ने नहीं बताया कि वो पहले से जानता था, लेकिन पहले से ऐसा कोई इरादा नहीं था सेठ का, पर लड़का इतनी मेहनत से इतनी लगन से काम कर रहा था, क्यों जानते हैं बहनों भाइयों, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस कारोबार से और उस परिवार से जोड़ दिया था। जो लोग कहते कि हमारा काम में मन नहीं लगता, अपने आप को उस काम से जोड़ कर देखिए, ये मानकर चलिए कि ये मेरा काम है, ये मेरा फायदा है, फिर देखना सचमुच वो काम आपका है और उसका फायदा भी आपका हो सकता है। आखिरी समय में सेठ ने बच्चे के बेटे के उस लड़के के सिर पर हाथ रखा, चाबियां सौंपते हुए कहा तू मिला, देर बाद मिला, लेकिन मैं बहुत देर बाद पहचान पाया कि तू तो मेरा अपना है, तू मेरा अपना था, तू मेरा अपना ही होगा, जन्म से, कर्म से, मन से। मेरे निधन के बाद मेरी चिता को आग तू ही देगा, मेरा सर्वस्व तू ही लेगा, तेरा अधिकार है।

0: पहचान,
1: जहाँ अपनापन होता है ना वह लगन होती है, काम के प्रति समर्पण होता है। बहन भाइयों, वो लड़का पहले तो कभी कभार सेठ जी की किसी बात का बुरा मानता था, लेकिन उसके बाद तो उसने झिड़कना और वो डांटना फटकारना प्रसाद की तरह से स्वीकार किया, और इस व्यवहार से सेठ भी इतना प्रभावित हुआ कि वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार देने लगा। तो लड़के के मन से ये बात बिल्कुल उतर गई कि मैं इसलिए सेवा नहीं करूंगा कि ये अपना कारोबार मेरे नाम कर रहे हैं। हालांकि ये तब तक सच नहीं था, पर बच्चे ने निस्वार्थ होकर के सेवा करनी शुरू कर दी तो सेठ ने सचमुच अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। बच्चे ने मना किया, नहीं, उसने कहा मेरा कोई है नहीं बेटा, तू ही है, तूने आखिरी वक्त में आकर के जो सेवा की है, जो अपनापन दिया है, तू ही मेरा अपना है। आप जिस चीज को भी अपनापन देंगे ना, उसके प्रति आपके मन में सम्मान भी और भाई काम करने की क्षमता भी अपने आप बढ़ जाएगी। जहां आप जॉब करते हैं मन नहीं लगता, उसे अपना मान के करके देखिए, मन भी लगेगा। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है इस विचार का, जिसका आलेख अनिल वर्मा जी ने रेडिंग से भिजवाया। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोभना राय जी, आपका मैसेज मिला। प्रतिभा जी कहती हैं ऐसे लोग हैं आजकल भी, आजमा के देखेंगे भाई, अपना किसी को बना के देखो, दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो या मेरे बन जाओ या अपना बना कर देख लो। जगदीश जी बुशी से थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। चिंतन पम्मी सलाव से बहुत बढ़िया भाई पम्मी। सुनीता शर्मा कहती है इंटेग्रिटी शुड बी देयर, यस। प्रकाश सुथर नॉर्थोल्ड से, फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन से, अनिल सोनी जी वियाना से थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रिया में आप हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं।

0: और भाई सौरभ जी ने धन्यवाद किया उस गीत के लिए हमारे कुरुक्षेत्र में आइए, हरविंदर मलिक की रचना थी भाई, आपने फरमाइश की हमने सुनवा दिया और यहाँ लंदन में ही कुरुक्षेत्र बसा दिया। थैंक यू चिंतन के लिए अर्जुन जी, राजीव पटेल उल्लास टोरंटो से, निर्मला जी, रागिनी जस्मीन, महेंद्र क्रोइडन से आप सबके संदेश मिल रहे हैं। और एक आप है PR, जाने भाई क्या अर्थ निकलता है, आपका भी संदेश मिला है। नैना शाह, हेतल सोलंकी, राधा गर्ग रेडिंग से आपका भी संदेश आया है। राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा बोरा, भावना, देशराज बैसन साहब, आपने भी एक चिंतन भेज दिया है जी, सर आंखों पर, कभी शामिल करूंगा प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच भरत गंगाराम, आप सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, धन्यवाद, प्रशंसा सुनाते हैं। मीनल त्रिवेदी, थैंक यू। नीलम जी, आप तो हमारी रेगुलर लिसनर हैं। मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच। हिना सहर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चिंतन को समेटते हैं। भाई आज जो गीत हमने सुनवाया चिंतन के साथ, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म, कौन सी फिल्म थी, महबूब की मेहंदी, जिन्होंने देखी होगी बड़ी इमोशनल भाई वो ये तस्वीरें थी इस गीत के साथ, घटना थी बड़ी इमोशनल, मोहम्मद रफी की आवाज में था। चिंतन के लिए एक बार फिर से रेडिंग किया अनिल वर्मा जी को धन्यवाद दोहराते हुए, चिंतन समेटते हैं, याद दिलाते हैं, मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद हम आपको चिंतन सुनवाते हैं। आज का चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट चल रहा है, पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हैं अपनों को। अरे आप कहेंगे कि अपना कौन भाई, मैं आपका अपना हूं बता दूं मतलब भारत में आपके अपने, आपके दोस्त रिश्तेदार भाई, इस समय जो रेट चल रहा है अच्छा है। SBI यूके दे रहे हैं फॉर £1 128.4 इंडियन रुपीज, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। Don't forget terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: और भाई बता दें आपको फुटबॉल के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले जो हैं अपने चरम पर हैं और समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप तो जानते हैं कल जो हुआ भाई खूब घमासान हुआ, और आज जो होगा, वेल टुडे इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, दोनों टीमें दावेदार हैं, दोनों हकदार हैं वर्ल्ड कप के। लोग कहते हैं वो इंग्लैंड की शर्ट पहने घूम रहा था, कहता था 1986 याद है, मैंने कहा याद तो नहीं लेकिन कर लेंगे, आपको तो याद कर लेंगे। और अर्जेंटीना की टीम भी भाई प्रसिद्ध है फुटबॉल में, तो आज शाम को 8 बजे मैच शुरू होगा और आप देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, हमारे यहाँ से स्कोर बताया जाएगा, बताते रहेंगे, मैच की स्थिति आप तक पहुँचाते रहेंगे। बट डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका, जो ये फुटबॉल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं भाई, 15 मिनट की लीगल एडवाइस फ्री देंगे अगर आप लाइका मेंशन करके उनसे संपर्क करेंगे तो। फोन नंबर उनका याद है, नहीं याद है तो नोट कीजिए।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.
8: The Janan and J. Dodds summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J. Dodds summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Leicester Mela is back
12: and the stage is about to explode.

0: is Leica. और भाई लाइका गोल्ड पर एक सूचना है आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास सूचना यह है कि इंडियास पॉपुलर स्ट्रीट फूड प्लेस बीकानेर वाला खुला है और गैंटसिल में आज आपका इंतजार करेंगे हम। ये इलफोर्ड में गैंटसिल स्टेशन के पास सेलिब्रेट द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ दिस वेंसडे। कब है ये? बुधवार कब है भाई? इस बुधवार को कहते हैं। वहां पर शर्मा जी पहुंच रहे हैं और ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन हो रहा है। और बाय द वे बुधवार है कब?
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: और चटपटी बातों में फंसना चाहिए, 7 दिनों में हंसना चाहिए। लेकिन आज का दिन खास बनाने जा रहे हैं भाई। आज है बुधवार और 15 जुलाई का ये दिन खास रहेगा। शाम 4 बजे हम पहुंच रहे हैं वहां। अभी आइएगा, टेस्ट जो है करिएगा, छोले भटूरे, राज कचोरी, मिठाई और चाट्स, मोर एट बीकानेर वाला इलफोर्ड, 513 से लेके 519 तक, क्रैनबुक रोड इलफोर्ड में, गैंट्स हिल के पास, IG26HA, बीकानेर वाला, द लेजेंडरी टेस्ट सिंस 905।
2: ये है लाइका रेडियो
3: फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

बाली भाई आएंगे, शर्मा जी भी आएंगे, और देखते हैं कौन कौन आएंगे। बीकानेर वाला गैंड सिंह, करंट बुक रोड पर

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: आवे तो तने बात कहूं खानगी।
2: जूनागढ़ ना सीताफल ए मारा धोड़का ना दाहम।

0: अरे अरे अरे अरे अरे मारी पोर बंदर नहीं खा दिली।
1: अबे जा जा जा।
0: ओए ओए ओए ओए मारा बुझना पकवा।
2: શું કહેવાનું છે, મજા આવી ગઈ છે ભાઈ? મજા જો હે ના વો હિન્દી ઉર્દુ મેં તો આતા હૈ લેકિન ગુજરાતી મેં મજા આતી હૈ। ये कैसे लिंक चेंज कर लिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब भी कहीं बड़ा बड़ा मजा आवी गई छे। तो भाई मजा आवी गई छे, हवे मारी गुजराती बहुत सरस नथी, शू करू कोटी ने सीखवानी कोशिश करू छु, मतने आवड़ती नथी। हे एक छोड़ो क्या रखा है सच्ची बातों में। हाँ तो साहब दो गीत बैक टू बैक सुनवाते हुए हमने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में प्रवेश कर लिया है। और बहनों भाइयों याद दिला दूं, ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड है भाई, सोने का खजाना है, यानी एक एक गीत सोने में मढ़ा हुआ है। क्यों शर्मा जी?
3: भाई रवि शर्मा बोल रहा हूँ। गाना बजाना तो जितना पुराना उतना सयाना, ओल्ड इज गोल्ड एंड दैट इज कॉल्ड लाइका गोल्ड,
2: दैट इज कॉल्ड लाइका गोल्ड। और भाई भाइयों लाइका गोल्ड पर गीत संगीत भाई एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ काम की जानकारियां भी पहुंचाते हैं, जैसे कि पाउंड रेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके।
4: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके इस समय दे रहे हैं एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में 128.4 रुपीज, 128 रुपए 40 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, डीमॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें डीमॉन्टफोर्टहॉल.co.uk
6: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: संगीतकार रवि की बनाई धुन पर ये थे आशा भोसले, महेंद्र कपूर और सलमा आगा भाई, कव्वाली थी फिल्म निकाह से। संगीतकार रवि इस सप्ताह के आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी रचनाएं सुनेंगे आप उनकी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: भाई जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं, जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं, उनका भी वही संवाद होता है, बातचीत का सिलसिला चलता है। आपने कभी कुत्तों को आपस में बात करते सुना है? सुना होगा तो समझा नहीं होगा, वो कर रहे थे आओ, आओ, आओ, आओ। और कभी कभी गुस्से में कभी प्यार से भी बोलते हैं। कल दो कुत्ते बात कर रहे थे।
3: अरे यार सुना, वो दूसरी गली के दो भूरे कुत्ते हमारे इलाके में आए और हमारी वो काली कुतिया को छेड़ के चले गए।
0: दूसरा जबरू कुत्ता बोला, उनकी इतनी हिम्मत, वो अपने दो रोटला और क्या कहते वो होते हैं रोटवाइलर, क्या बोलते हैं उनको, ड्यूटी पर नहीं थे क्या? बोला साहब ड्यूटी पर तो थे, उन्होंने उनको रोक कर बुरी तरह टॉक कर भौंक भौंक कर वार्निंग दे दी।
3: सालो बिना पूछ के मरियल कुत्तो, फिर कभी हमारे मोहल्ले में नजर आए तो तुम्हें आदमी की मौत मारेंगे।
0: कुत्ते की मौत तो कह नहीं सकते थे ना भाई, वो तो अब उनकी, तुम्हें आदमी की मौत मारेंगे।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आपको याद दिला दूं है ना भाइयों, आज हमारी आपकी एक मुलाकात होने वाली है और साहब मुलाकात में एक सौगात होने वाली है, खाने पीने की मैं मौज रहेगी। हम आज मिलने जा रहे हैं शाम 4 बजे, वैसे तो भाई आप पहले भी पहुंच सकते हैं, वहां खुला है। बीकानेर वाला अपने स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आपका इंतजार करेगा शाम 4 बजे। रवि शर्मा नहीं, अपने हाथों से मैं बना नहीं, मैंने अपने हाथों से कहाँ बनाया सर लेकिन वो व्यंजन जो है उनके बड़े मशहूर है, वो आज उसकी ग्रैंड ओपनिंग है। और कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको, एड्रेस लिखवा देता हूँ। वेल आज उनकी ओपनिंग खुल तो चुके हैं, वो वहाँ पर अच्छी भी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन आज वो ऑफिशियल ओपनिंग उनकी आज है शाम 4 बजे बीकानेर वाला, 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, IG16HA, हमारे दैट्स नियर वो क्या है गैंडसिल, हाँ, और ये जो क्रैनब्रुक रोड है इल्फोर्ड में है, पहुँचिएगा वहाँ, मिलते हैं, बतियाते हैं, पीते खाते हैं, मौज मनाते हैं शाम को 4 बजे। ऑल द बेस्ट।
0: ये है लाइका रेडियो,
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: तुझको जो बुरा लगे ऐसा कभी किया नहीं है, बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। नहीं, वो कहते हो कुत्ते वाला जोक मुझे बुरा लगा। नहीं यार, आप ओ खाम खाप अपने ऊपर ले रहे हैं भैया। आजकल लोग जो है ना, वह हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए कुत्ते रखते हैं। यहाँ पर कुत्ते बंदों को अपनी रक्षा के लिए रखते हैं। हॉलीडे साउथ ऑल ट्रेवल का संदेश नोट कीजिए। कह रहे हैं कि साउथ ऑल ट्रेवल आपको बड़े गर्व से बता रहे हैं कि FCDO द्वारा वो जो पाबंदी का ऐलान था, हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
0: Sharma ji, kutton ki main apni baat karo. कुत्तों की बात मत करो। नहीं, क्यों ना करें भाई, इसलिए कि भाई वो भी देखो, वो भी जीव है, जीवात्मा है, वो भी प्राणी है। अब कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त पशु होता है। वहां पर क्या होता है कि लोग जैसे बोर्ड पे एक वार्निंग लिखते हैं, बीवेयर ऑफ डॉग्स, यहां भी लिखते हैं भाई कुत्ते से सावधानी। जिसके घर में कुत्ता नहीं होता वो भी लिख देता है कि भाई डिटेरेंट है, सुरक्षा के भाव से चोर डर के रहेंगे भाई इस घर में कुत्ता है। और कई घरों में सचमुच कुत्ते होते हैं। नहीं, मेरा मतलब आदमी होते हैं लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं। अब साहब कई कई तो अपना नाम लिखवाते हैं, साथ में ये वार्निंग भी लिखवाते हैं, यानी घर के बाहर बोर्ड लगा है रवि शर्मा, उसके साथ ही नीचे लिखा होता है कुत्ते से सावधान, कुत्ते से बच के रहना। अब लोग बताइए क्या मतलब निकालेंगे, फिर क्या करेंगे शर्मा जी आप।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
5: Lester Miller is back.
6: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
5: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
6: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
7: आपके सामने एक रेड बटन है,
8: दबा दिया।
7: नहीं दबाना था।
9: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
9: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
12: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता।
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
16: Punjab, the biggest tunes.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

टेस्टी ट्रैक ऑफ द आर मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक साथियों की आवाजों में। भाई टेस्टी तो ये हमारे श्रोता कह रहे हैं कि चूरमा होता है। रोहित अहलावत रेडिंग से कह रहे हैं, शर्मा जी चूरमा खाओगे? भाई खिलाओगे तो खा लेंगे। कहते आज वो हमने ना इस सप्ताह चूरमा दिवस मनाया। बड़ी बढ़िया डिश है भाई। यात्रा के लिए लोग साथ लेके चलते थे, कोई खराब होने की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि देसी घी से बना हुआ और रोटी पराठा बना के गुड़ के साथ मिलाकर कूट के अच्छी तरह से चूरमा। मुंह में पानी आ जाता है नाम लेते हुए। बोला खाओ चूरमा, बड़ो चूरमा।

0: नहीं मारनी चाहिए। आंख मत मारो भाई, आंख मत मारो, किसी को लग जाएगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और मैं देख रहा था कि भाई आज 15 जुलाई को जन्मदिन मनाने वालों में कौन कौन शामिल हैं। वाले एक तो के कामराज भाई, बहुत पुराने कांग्रेसी लीडर, कभी प्रेसिडेंट होते थे कांग्रेस पार्टी के, कामराज, तो वो उनका जन्मदिन है। जो अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन 1903 में वो जन्मे थे। और विजय शेखर शर्मा, ये नाम सुना आपने? अरे साहब, पेटीएम बड़ी मशहूर कंपनी है उनकी, और बहुत फेमस हो गए हैं और बहुत रिच भी हो गए हैं। फाउंडर ऑफ हैं ये पेटीएम के। और शैलेश लोढ़ा, ये भाई राजस्थान के कवि हैं, हास्य अभिनेता हैं, यहाँ पार्लियामेंट में इनसे मुलाकात हुई थी, बड़े दिलचस्प इंसान हैं। इनका भी आज जन्मदिन है, ये 1969 में आज के दिन जन्मे थे। आज जन्म लेने वालों में और भी कई नाम शामिल हैं। जय सिंह, ये भाई आमेर में जन्मे थे 1611 में, राजस्थान के महाराजा ऑफ जयपुर, शायद जयपुर इन्हीं के नाम से जो है वो स्थापित हुआ था। और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में और भी कई नाम शामिल हैं, जैसे कि परमेश्वर गोदरेज वाज एन इंडियन फिलंथम्पिस्ट, जो है वो फिलंथम्पिस्ट मतलब वो दान पुण्य करने वाले, चैरिटी करने वाले, बड़ा मशहूर नाम हुआ है। एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ गोदरेज ग्रुप, जो है 1945 में जन्मे थे। सरदारा सिंह, हॉकी प्लेयर हरियाणा के, भाई ये आज ही के दिन जन्मे थे 1986 में। हैप्पी बर्थडे टू यू सरदारा सिंह। अरे मेरा ख्याल है पद्मश्री सरदारा सिंह हैं, कैप्टन भी रहे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के, अब भी हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी, मंत्री भी रहे। इसके अलावा भाई धनंजय मुंडे, ये भी पॉलिटिशियन है, इनका भी जन्मदिन आज, ये 1975 में जन्मे थे। और एक और नाम बड़े गर्व से मैं लेना चाहता हूँ, मोहम्मद उस्मान, आजमगढ़ में जन्मे थे 1912 में। ये भाई भारतीय फौज में शहीद हुए और इनको महावीर चक्र, जो बहुत बड़ी ये कि ये उपाधि, बहुत बड़ा एजाज है हिंदुस्तानी फौज में, तो ये मोहम्मद उस्मान को मिला था। और देश को इन पर आज भी गर्व है। ये 19 वो जो लड़ाई बंटवारे के समय शुरू हो गई थी कश्मीर में, उसमें ये शहीद हुए थे, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़े थे। और आजमगढ़ में पैदा हुए थे 1912 में। ये नाम सुना आपने, चौधरी मोहम्मद अली, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, ये चौथे वजीर आजम। भाई बहुत ज्यादा देर नहीं रहे, बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ इनका, लेकिन हिस्ट्री में तो दर्ज हो गया, द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली, 15 जुलाई 1905 में जन्मे थे। भाई आपके घर में, परिवार में किसी का जन्मदिन, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency rates mein bata raha hu, note kijiye, LemFi de rahe hain for 1 pound in Indian currency 129.13 rupees. Pakistani 372.55. Sri Lankan rupee 450.67. Bangladeshi takas 165.21 and Afghani 88.95.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold is sold at the rate of 96.95 pounds per gram.
1: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio. Hello.
3: Leica Radio.
2: Mister, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sill, Leicester, LE54UN.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर द स्टार.
4: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी.
3: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत घुराया ते योगराज सिंह.
5: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
6: Create terror.
3: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू.
4: एक सिंह दा पुत्तर दस्तार सजाऊंगा भी ते दस्तार लई लड़ूंगा भी.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danu. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड.
11: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: लीजिए साहब, याद दिला दूं कि कार्यक्रम को समेटने के बाद भी आपने आज ही एक बार और मिलना है. याद है ना, भूले तो नहीं है. आप पूछेंगे कब मिलना है, कहां मिलना है. अरे साहब, वहां मिलना है. दिन भर चर्चा करते रहे हैं, भूलिएगा नहीं. शाम 4 बजे मैं पहुंच जाऊंगा वहां, बीकानेर वाला. बीकानेर मत पहुंच जाइएगा, बीकानेर वाला के यहाँ पहुंचना है.
15: छोटी सी ये दुनिया.

0: They are the songs of केसी बोकारिया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर केसी बोकारिया जी, जिन्होंने 60 के ऊपर फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट की है. उनका हॉट पोटैटो अब रिलीज हो रहा है. हॉट पोटैटो यानी के एक फिल्म, एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी ऐसी है कि जिसमें उनको इतनी कठिनाइयां मिली, उनको सेंसर बोर्ड के पास जाना पड़ा और यू कैन से सेंसर हो गया था और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाना पड़ा. क्या स्टोरी थी, क्यों ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी वजह से केसी बोकारिया जी को इतनी कठिनाइयों के फेस करनी पड़ी, और उसके बाद ये फिल्म 18 तारीख को रिलीज हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पे. तो मैं उनसे बात करूंगा, आई थिंक अराउंड 1:30 मैं बात करूंगा. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइका गोल्ड. यस, ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. एंड आई रियली विश यू अ गोल्ड आफ्टरनून. इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज बहुत जरूरी है कि आप पानी पीते रहें. एंड ट्रेन में भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, अनाउंसमेंट्स भी होती है स्टेशन पे भी, ऑलवेज कैरी अ बॉटल ऑफ वाटर विद यू एंड Stay hydrated. सुनते रहिएगा, आगे इंटरव्यू आ रहा है केसी बोकारिया जी का आफ्टर वन सॉन्ग.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.4. 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Lister, LE1 2JU and 2A, Rollout Sill, Lister, LE5 4UN. Start

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: The Janaan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janaan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janaan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: Back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist
3: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
4: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England.
1: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
5: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
6: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा Ordinary.
7: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
2: Add Desi Tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
1: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
5: Okay, help's on its way.
6: Grab my hand!
4: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
7: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
9: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
10: Ab main jinko bulana chahta hu, itni excitement hai yahan pure Laika parivar mein, in the Laika Radio Network mein. क्योंकि जब अनाउंस किया गया कि केसी बोकाड़िया जी इज कमिंग ऑन लाइव ऑन एयर तो एवरीबडी इज लाइंड अप हियर और सब लोग सुन रहे हैं. पहली फिल्म 1972 में रिवाज फिल्म इन्होंने शुरुआत की थी एज अ प्रोड्यूसर और उसके बाद ही डिड मैनी अदर फिल्म्स. वो हमें बताएंगे धर्मेंद्र साहब के साथ कौन सी फिल्म की थी, अमिताभ बच्चन जी के साथ कौन सी फिल्में की थी. मतलब कोई भी हीरो ऐसा नहीं है जिनके साथ इन्होंने जिन्होंने इनके लिए काम नहीं किया हो. एंड देन शाहरुख खान बोल दो या सलमान खान बोल दो. एंड कल ही मुझे बता रहे थे ही इज गोइंग टू मीट सलमान खान जी, सो आई वाज सो एक्साइटेड, ही विल टेल अस ऑल अबाउट इट. एंड देन आज का अर्जुन 1990 में उनका वो प्रोड्यूस जब करते थे तो ये पहली फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्शन शुरू की और उसके बाद कितनी अनगिनत फिल्में इन्होंने डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की. और अब लेटेस्ट फिल्म जो है जो 2026 का धमाका, जी हाँ, आफ्टर 54 इयर्स ही इज अगेन कम अप विद समथिंग फैंटास्टिक. इट्स कॉल्ड तीसरी बेगम. उसके बारे में हम बात करेंगे उनसे, पहले उनका स्वागत करते हैं. केसी बोकाड़िया जी नमस्कार. बोकाड़े साहब,
11: हाँ नमस्कार जी,
10: आपका लाइका गोल्ड में स्वागत है.
11: मेरा भी आपको सर बहुत बहुत सादर प्रणाम, राधे टूके. आप लोग इतना प्रेम रखते हो
10: जी,
11: और बस आपको पूरे लाइका परिवार को मैं हाथ जोड़ के सारे सुनने वालों को
10: जी सर,
11: बहुत पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको नमस्कार सर, पूरे हिंदुस्तान की.
10: थैंक यू सर, इट्स सो नाइस के आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ. हम जब भी मैं मुंबई आता हूँ आपको मिले बगैर तो मैं निकलता ही नहीं हूँ मुंबई से.
11: नहीं नहीं सर, आप भूल गए हो, आपने मुझे सुपरहिट फिल्म दी हम तुम्हारे सनम, वैसा सिला दिया वफा का. इसके अलावा भी कई फिल्में आपने, कई गाने हमारे रिकॉर्ड किए. बाली जी जो है इज वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल मैन, वंडरफुल टेक्नीशियन, सिंगर, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर. इनको पूछ लो आप, मैंने इनको जो खिला के पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने कहा बाली जी आप खुद म्यूजिक कंपोज करें, बिकॉज जो सिंगर अच्छा होगा वो कंपोजर भी अच्छा होगा, और जो कंपोजर अच्छा होगा वो दिल से गाएगा, बिकॉज इसने कंपोज किया है तो मतलब समझता है, वर्डिंग का मतलब समझता है. तो बाली जी की मैं ज्यादा तारीफ नहीं करके कुछ बोलने से मुझे अच्छा लग रहा है कि वंडरफुल सिंगर, वंडरफुल म्यूजिक डायरेक्टर.
10: आपकी इनायत, थैंक यू सर. सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया था टू डू म्यूजिक डायरेक्शन. आपने जब बप्पी लहरी जी के म्यूजिक रूम में हम बैठे थे, आपने देखा कि मैं कुछ आइडियाज दे रहा था फिल्म कुंदन में, तो उन्होंने कहा कि आपके पास आइडियाज होते हैं, आपको नॉलेज है, तो एक फिल्म कर डालो. फिर आपने मुझे प्यार जिंदगी है में म्यूजिक डायरेक्शन का चांस दिया था, जिसमें कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम सबसे हमने गाने गवाए थे एंड यू गेव मी दैट चांस, थैंक यू सो मच। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अबाउट योर लेटेस्ट प्रोडक्शन तीसरी बेगम, कैसा चल रहा है?
12: सर बहुत जोरदार है, इट्स रियली एक, इट्स नॉट फिल्म नहीं है सर, एक मैसेज, एक भावना है जो मैं समझता हूँ कि इट हैज पर्पज। ऑल्दो सुनने को तो लगता है कि यहाँ भी ऐसा काफी लोग आपस में बोलते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, पर मेरा तो बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा था नहीं और है भी नहीं। हमारे तो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
10: Absolutely.
12: लेकिन जो पर्पज, जो एक इंसिडेंट हुआ था मेरी जिंदगी में कि मैं किसी के घर गया था, उसने मुझे बुलाया था कि बुकड़े साहब आने से मेरी शान बढ़ जाएगी। तो उसके घर में काफी औरतें थी, मैंने पूछा भाई तुम्हारी कितनी बीवी है, तो बोले तीन, एक मुस्लिम की, एक राजपूत की, एक ब्राह्मण की।
10: Oh my God.
12: मुझे एक सेकंड के लिए जरा लगा, और लेकिन बाली जी जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा, ठीक है यार तुम तीन बीवियां हैं, तुम रखो, कोई नहीं, तुम्हारा मजहब में अलग है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसको उसको ग्लोरीफाई मत करो।
10: जी।
12: तो सर हमको इस बात का प्राउड है कि हमने दो बीवियां हिंदू की लेके आए, एक राजपूत की और एक ब्राह्मण की।
10: हाँ।
12: उस बात से फिर ओनली दिस मच इंसिडेंट आई हैव टेकन फ्रॉम दैट फैमिली, अदरवाइज होल स्क्रिप्ट आई मेड इट माय ओन, और उसमें फिर पिक्चर बनी, और बनने के बाद बनते बनते जो भी, तो बनने में इतनी परेशानी नहीं हुई थी जब मैं सेंसर कराने, जो हिंदुस्तान में और आपके वहां भी होता है
10: जी।
12: तो फिल्मों को सेंसर करवाना पड़ता है।
10: हाँ जी।
12: तो वहां लेके गया मैं दिल्ली।
10: हाँ।
12: तो सर मुझे बोला सर हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, आप इसको बॉम्बे लेके जाओ।
10: ओ।
12: मैंने कहा सर आप बोलो तो सर क्या प्रॉब्लम है, तो बस फिर मुझे मना कर दिया। तो मैं देन साहब वहां गया मैं बॉम्बे।
10: हाँ।
12: और बॉम्बे वालों को दिखाया पिक्चर, देखने के बाद उन्होंने सर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी रिवाइजिंग में भी। हमारे यहाँ सिस्टम होता है अगर एक जगह नहीं होता तो आप लाइक अपील होता है ना ऊपर के कोर्ट में, वैसे रिवाइजिंग बोलते हैं उसको, तो रिवाइजिंग में उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी। और फिर कुछ बातें थी सर जो मुझे नहीं मंजूर थी, उसमें एक दो सीन था, आई डोंट नो आई शुड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट सिंस पिक्चर रिलीज और पिक्चर में गोइंग टू बी रिलीज, तो उसमें ये सीन है सर कि ब्राह्मण की लड़की को जब मालूम पड़ता है कि मेरे साथ मैंने काम गलत कर लिया, उसको बोला तुम शादीशुदा हो, बोले यस हाँ, तो बोले तुमने बताया नहीं, बोले तुमने पूछा ही नहीं, तो तुम बताना चाहिए तुम्हारा फर्ज है, तो बोले हमारे यहाँ तो आम शादियां होती है दो तीन, अगर मैंने नहीं तो कोई बोले खैर छोड़ो अब क्या करना, अब तो हो गई शादी, बोले अब बच्चा क्या करने के लिए, बोले मैंने यहाँ नहीं रहना। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था सर, जो मैं आई एम नॉट फेवरिंग एनीबॉडी और अनफेवरिंग एनीबॉडी, कि शादी ब्याह जो होते हैं ना सर वो दिलों के रिश्ते होते हैं, अगर चाहे हमारे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, अगर आपस में मेल मिलाप है तो उस रिश्ते का आनंद अलग है। अब आप जबरदस्ती और उसको प्रेस्टीज इश्यू बनाकर किसी को प्रेशर करके रखना ठीक नहीं है। तो वहां से वो उसमें दूसरी लड़की जो राजपूत की थी, उसने वो जानते आपस में, राजपूत की लड़की ने बोला यू वेट फॉर सम टाइम, अब मैं देन मुस्लिम की जो फर्स्ट नंबर थी बीवी, उसने सपोर्ट करके दोनों हिंदुओं की लड़कियों को वहां से आजाद करवाया। अब ये हमने तो बैलेंस किया देखिए दोनों को, उसके बाद जब पूछते हैं उसको, लड़की को जब रहना ही नहीं है तो उनकी उस्ताद नहीं होती है जो उनको सिखाते हैं तौर तरीका, कभी हमारे ऐसे नमाज पढ़ी जाती है, पांच नमाजें होती है
10: जी।
12: तो अब चूंकि उसको रहना ही नहीं था तो उसने जाते ही वो सास बोलते इनको आदाब करो, उसने बोला नमस्कार, वहीं से बात बिगड़नी थी, फिर बोला आदाब करो, बोले नमस्ते नमस्कार, फिर पूछा बेटे तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा जी मेरा नाम पूजा दीक्षित, बोले नहीं नगमा नाम है तुम्हारा, नगमा खान, बोले नहीं मेरा आधार कार्ड में यही नाम है। फिर पूछा हम सब तुम्हारा मालिक, हम सब का मालिक कौन है, तो सर वो चुप हो गई।
10: हाँ।
12: चुप होने के बाद में बोले सास ने बोला भाई पूछ रही है हम सब का मालिक कौन है।
10: हाँ जी।
12: तो उसने कहा जय सिया राम, अब जय सिया राम बोलते वो टूट पड़े उस पे, बोले जय सिया राम नहीं अल्लाह खुदा परवरदिगार हमारा अल्लाह मालिक है, बोले नहीं हमने बचपन से एक ही नाम सुना जय सिया राम। अब ये उनको प्रॉब्लम सेंसर वालों को, फिर हमने उनको कन्विंस किया, हमने कहा सर अगर ब्राह्मण की बेटी है और वो भले ही उसने निकाह पढ़ लिया हो, लेकिन जब वो बोल रही मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तो उसका मन और दिमाग तो ब्राह्मण का ही रहेगा
10: जी।
12: और वो बोला कि भाई हमारा मालिक तो राम है, तो राम जी है, तो उसको आप जबरदस्ती क्यों अल्लाह कहलवा रहे हो। और वो बोलती भी है बेचारी का, आप ऐसा सवाल ही क्यों करते हो जिसका कोई जवाब नहीं होता। लड़की बोलती है, और फिर जो है सर उसको ये अल्लाह और राम और इस बीच में काफी प्रॉब्लम हुई, ऐसे कुछ सीन थे सर, और सीन थे तो उसमें वो उनको एतराज था। फिर लास्ट में एक सीन था सर, जो वो जो काफी दोनों को, लड़कियों को, दोनों को, बहुओं को, उनको, बेटियों को, ये मुस्लिम की लड़की उनको आजाद करके भेजती है, और भेजने के बाद में वो जब जाते हैं तो पीछा करता है, टॉर्चर करता है, तो बोलते हैं कि हम तुमको आराम से तुम अपनी जिंदगी जियो, हमारा छोड़ दो, आजाद करो। तो बोलता नहीं, हमारे घर से तुम जा नहीं सकते, हमारे घर से तो सिर्फ कब्रिस्तान तक रास्ता जाता है। तो फिर वो लड़कियों को टॉर्चर, फिर लड़कियों ने अपने आप को मजबूत किया। ये प्लस पॉइंट है मेरा, जिसमें यहाँ मेरी पिक्चर बहुत अच्छी गई, हमने थिएटर में लगाया, सब औरतें एकदम मोटिवेट हो रखी थी। तो जब रिव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला कि लड़कियों से पूछा कैसी लगी पिक्चर, फिर पूछा कैसा क्या अच्छा लगा, बोले इसमें दिखाया गया लड़कियों को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो लड़कियों को अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए, जो दिल बोलता है उसको मजबूती से, ताकत से सामना करना चाहिए।
10: तो
12: बाली जी वहां से वो फिर भगवान भला करे वो फिर पीछे पड़ा। तो फिर लड़कियों ने अपने आप को ट्रेंड किया, मजबूत किया, जिम में इम में जाके सब सीखा। मेरी एक पिक्चर थी फूल बने अंगारे, जिसमें रेखा थी और वो रेखा जी थी और रजनीकांत जी थे
10: जी।
12: उसमें फिर रेखा टीचर होती है और उसने अपने आप को मजबूत किया, तो वैसे ही इन दोनों लड़कियों ने अपने आप को मजबूत किया
10: जी।
12: और फिर उसको पूछा कि बोल क्या मिलना है, तो उसने जगह बताई और जगह में दोनों लड़कियों और उनके बीच में सवाल जवाब होते हैं, जवाब के बाद फाइट होती है। तो पहले तो नेचुरली लड़के ने लड़कियों को दबा के मारा, फिर समाव लड़की है उसको ओवर पावर कर दिया सर, उसको मारना जो शुरू किया। तो हमारे यहाँ सर थिएटर में बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, इसलिए नहीं कि वो हिंदू की लड़की मार रही है, इसलिए हुआ कि भाई कोई लाचार लड़की वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है ना, तो पब्लिक तो चाहे आपका लंदन हो चाहे इंडिया हो, हर कमजोर आदमी को मजबूत बनने के लिए सारा देते हैं और सांस भी बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी हो चाहे हमारे यहाँ हो, तो यहाँ थिएटर में जो तालिये जो क्लैप हुई और क्लैप के बाद में सर वो लड़के को उसने दबोच लिया, तो लड़के के पास कोई बचने का रास्ता नहीं बचा
10: जी।
12: तो उसने सर हाथ जोड़ के पहले बोला कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम विधवा हो जाओगे, फिर बोल दे मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक तलाक तलाक तलाक, बोले कितना आसानी से बोल दिया तलाक तलाक। और फिर बोलता मेरी बीवी ने तुमको बहुत सपोर्ट किया, वो विधवा उसका वास्ता, फिर भी लड़के बोलती नहीं हमारे माँ बाप मर गए, हमारे ये हुआ। लड़के को जब बचने का कोई साधन नहीं बचा तो लड़का हाथ जोड़ के जय सी आराम करने लगा। तो फिर सर उनको एतराज था कि आपने मुस्लिम से जय सी आराम बचा है, हमने कहा सर आप इसको अदरवाइज ले, आप इसको अदरवाइज ले, अगर अगर अगर हिंदू होता और सामने मारने वाला मुसलमान होता, सुन रहे हैं बाली जी?
10: मैं सुन रहा हूँ ना।
12: हेलो,
10: हाँ मैं सुन रहा हूँ ना।
12: सामने मुसलमान होता तो वो उसको यही कहता ना सर, खुदा का वास्ता, थोड़ी बोलता राम का वास्ता। तो अगर मुस्लिम उसको बचानी अपनी जान, तो उसने बोला जय सिया राम, तो बोले सर आप मुसलमान से जय सिया राम नहीं बुला सकते। एनीहाउ सर वो सेंसर में प्रॉब्लम हुई, फिर सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम बम्बई हाईकोर्ट में अप्रोच किया, हमने कहा सर राम जय सिया राम नहीं हटेगा सर, आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं जस्टिफाइड वे में कर रहा हूँ, और मेरा बैक ऑफ द कोई माइंड में नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कौम को नीचा दिखाना चाहता हूँ, वो भी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई है। तो उसके बावजूद उनको नहीं समझ आया, नहीं करना था, मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में जज साहब ने पिक्चर को देखा और देखने के बाद सब अलाउ किया सर, वो लास्ट में बोला रिक्वेस्टिंग वे में बोला कि बुखाड़े साहब आप एमकेबली सेटल कर लो, इट्स नथिंग दैट। तो वो भी कुछ हद तक मान गए, फिर सेंसर वालों को भी लगा कि हम जबरदस्ती गलती कर रहे हैं, वो भी कंप्रोमाइज किए।
10: हाँ।
12: फिर लास्ट में सर एक टाइम जो था जय सिया राम, उसकी जगह उससे बुलवाया कि तुम्हें तुम्हारा भगवान का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, तो लड़कियों ने भगवान की खातिर छोड़ दिया उसको। तो आज से पिक्चर रिलीज हुई।
10: हाँ जी,
12: रिलीज के बाद ना सर अलग स्टोरी शुरू हो गई कि मुझे यहाँ थिएटर वाले थिएटर नहीं दे रहे हैं कि तोड़ फोड़ होगी। मैं कहा सर कुछ है ही नहीं, आप ऐसा जबरदस्ती इसको इश्यू मत बढ़ाओ। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं। आई एम केसी बोकाड़िया, मेरा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे पंजाबी हो चाहे जैन हो, सब वी आर वन, सब ह्यूमन बींग आदमी है, सबके दिल में आत्मा है और सबको ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरा प्लीज लो, मैं ऑलवेज आई मेक गुड फिल्म, चाहे प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, आज का अर्जुन, नसीब अपना अपना, फूल बने अंगारे, दुनिया भर की फिल्म है सर हम तुम्हारे सनम। अभी हमारी एक लास्ट पिक्चर बहुत अच्छी गई सर, सिग्नेचर, जो अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, रणवीर सोरी, महिमा चौधरी, गजेंद्र आयरे जी का डायरेक्शन था। और फिल्म दिखाया हमने कि एक हॉस्पिटल बिकेम द माफिया, सॉरी टू से आई नेवर मीन इट दैट, बट हॉस्पिटल में आपके वहाँ होता नहीं होता, हमारे ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर मिडिल क्लास का आदमी कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाता है
10: जी, जी.
12: तो उसके मतलब लाइफ के आगे पीछे 5-10 साल की बैलेंस शीट खराब हो जाती है।
10: अच्छा।
12: ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट, और फिर उसकी वाइफ की डेथ हुई नहीं, बीमार थी तो उसको वेंटिलेटर लगा दिया। अब जब तक आप बिल भरो तो वो वेंटिलेटर चलेगा, तो अनुपम खेर बोलता है जितना पैसा आपकी जेब में उतनी सांस है, वो बेचारा पूरा स्ट्रगल करता है। हाउ इट कम्स वंडरफुल फिल्म, आई मेड इट। उसके बाद अभी नाउ
10: मैंने बड़ा नाम देखा स्टार कास्ट में, जरीना वहाब का नाम मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी,
12: जरीना वहाब इज द मदर ऑफ द गर्ल, एंड वो अच्छा, लड़कियों ने अच्छा काम किया।
10: हाँ जी,
12: और वो नीड थी सर, इफ मैं कोई बड़ी हीरोइन डालता ना सर,
10: हाँ
12: तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता।
10: हाँ
12: तो नहीं, बड़ी हीरोइन तो पीपल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि तुम कमजोर पड़ेगी, सरेंडर कर देगी। तो नई लड़की होने से, जो ब्राह्मण की लड़की है वो नई लड़की है, उसके होने से मैंने पिक्चर पे ज्यादा यू नो पिक्चर को सिंपल वे में प्रेजेंट किया, जैसे हाईफाई नहीं दिखाया कि कोई टेक्निकली, उसमें नीड भी नहीं थी। इट इज डायलॉग कंटेंट फिल्म, आई हैव रिटन इट, एंड मोस्ट ऑफ द फिल्म सब डायलॉग मैंने लिखे, चाहे आज का अर्जुन हो, चाहे लाल बादशाह हो, चाहे कोई भी हो।
10: इट्स सो नाइस टू टॉक टू सच अ बिग नेम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने यूके वालों को भी चांस दिया, जैसे चन्नी सिंह को आपने फिल्म में काम दिया था म्यूजिक डायरेक्शन का, तो वो भी मुझे बोलना था आपको।
12: चन्नी सिंह जी ने अच्छा दिया सर म्यूजिक, गाना सुपर हिट है, जीना लगे बिन तेरे यारा।
10: हाँ जी,
12: करोड़ों में हिट है।
10: हाँ,
12: और चन्नी सिंह जी हो चाहे बाली जी हो, आप सब लोग गुणी लोग हो सर,
10: थैंक यू सर।
12: सब एक ही है ना सर, या लंदन हो चाहे मैं उधर आपका इंग्लैंड के हो चाहे मैं इंडिया हो, तो सब हम लोग तो भाई भाई है सर, हमारे तो सब ब्लड भी एक है, हमारा कल्चर भी एक है।
10: थैंक यू सर,
12: बहुत बहुत धन्यवाद,
10: थैंक यू,
12: आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
10: नहीं, आपने वक्त निकाला तो हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर।
12: जो सुन रहे हैं 18 तारीख को ये पिक्चर लग रही है वेब पे, और आप जरूर देखिएगा, इट्स अ रियली गुड फिल्म। ऐसा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, और हमेशा आई मेड गुड फिल्म अगेन, हमेशा अच्छी बनाया, आगे भी अच्छी बनाऊंगा।
10: ओटीटी के कौन से प्लेटफॉर्म पे है ये?
12: वेब वेब पे सर, वेब वेब
10: वेब पे,
12: डब्ल्यू वेब जो है ना इंडिया का दूरदर्शन का वेब, इन्होंने अभी ओटीटी लॉन्च किया है।
10: शुक्रिया।
12: हाँ, तो आई एम मेकिंग,
10: थैंक यू सर।
12: तो उसके बाद हमारी एक दो, हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का, सब सुनने वालों को भी सादर प्रणाम मेरा, थैंक यू सर।
10: केसी बोकाड़िया, द ग्रेट नेम, आई एम सो हैप्पी टुडे ही केम ऑनलाइन लाइव ऑन एयर to tell us about his latest film. Thank you, Bokaria Saab. All the best to you.
12: Thank you, sir.
10: और आगे मैं वापस गाना सुनाऊंगा जो चन्नी सिंह का उन्होंने जिक्र किया था, तो वही गाना मैं सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। And it was such a pleasure talking to KC Bokaria Saab.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया।
13: Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
14: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
15: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: आपके सामने एक रेड बटन है,
18: दबा दिया,
17: नहीं दबाना था।
19: The madness is back, धमाल 4.
20: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
19: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
21: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
19: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
22: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाना?
23: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywood. Surrenderella, Panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
24: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
25: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
24: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
25: Also explore 2026 cruises
24: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
26: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: लाइकर रेडियो नेटवर्क, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
27: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
28: Have you noticed the way fans shout at football matches?
29: Oh, wake up!
28: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
30: Lester Miller is back.
31: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
30: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
31: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
30: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
31: Arts Council England.
3: Listen back to your favourite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Leica Radio across the Midlands. Leica Radio, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. This is Leica Gold across Greater London.
10: चन्नी सिंह, म्यूजिक डायरेक्शन इन शक्तिमान, और ये फिल्म केसी बोकाड़िया जी ने उनको दी थी. उदित नारायण और साधना सरगम जिन्होंने गाया है इस गाने के साथ। म्यूजिक ऑफ चन्नी सिंह।

तो आप जब इन गानों को सुने इस आवर में, मेक श्योर यू लिसन टू द पियानो पार्ट. यस, पियानो के पीसी जितने अच्छे अच्छे बजे हैं, सारा फुल आवर आप सुनेंगे. जितने भी गाने हैं मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ. फिल्म वक्त में लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग वर बाय साहिर लुधियानवी. एंड ये अभी आपने गाना सुना, फिल्म वंदना, इसमें अनजान ने लिरिक्स लिखी थी, अनजान जी ने, और दोनों का म्यूजिक दिया था म्यूजिक डायरेक्टर रवि. 1965 की फिल्म वक्त और 1975 की फिल्म दैट वाज वंदना. अब दोनों में जो सीन था, यू कैन से ऑन द स्क्रीन, दैट इज ऑन द पियानो. जी हाँ, साधना जी इन फिल्म वक्त was on the piano there and waiting for Sunil Dutt, and Rajkumar also comes there, and ye sab badi achhi story thi. Vandana film mein again Sadhna ji was on the piano. So I'm playing all the songs of females on screen playing piano. Ab dusra gana jo main next sunane ja raha hu, that will be Lakshmikant Pyarelal ka sangeet hai. Film hai Dharti Kahe Pukar Ke. Dharti Kahe Pukar Ke ka gana hai दिए जलाएं प्यार के. अब दिए जलाएं प्यार के वो गाना मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, एंड क्रेडिटेड एज यू कैन से निवेदिता, दैट्स लिबी राणा, एंड जितेंद्र कौन थे, संजीव कुमार भी थे उसमें, नंदा थी, और पियानो पे हीरोइन बैठी है और गाना गा रही है 1960.

0: T9 का वो गाना है, फिर उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा फिल्म जेलर का गाना, जिसमें अगेन यू कैन से के पियानो पे हीरोइन है फिल्म जेलर में, गीता बाली और राजकुमार, तो वो गाना भी आपको बड़ा मजा आएगा। एंड देन फिल्म नर्तकी का गाना मैंने चुना है, आज दुनिया बड़ी सुहानी है, वो भी आपको बड़ा मजा आएगा, आज दुनिया बड़ी सुहानी है। और मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा जैसे चलते जाएंगे। आई थिंक ज़ेब रहमान मस्ट बी ऑन द पियानो इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। पार्टी सॉन्ग है, शकील बदायूं ने लिखा, रवि का संगीत है, फिल्म नर्तकी का गाना है, सुनील दत्त भी है उसमें। सो पियानो पे औरत बैठी है और बजा रही है। सो ऑल द सॉन्ग्स ऑफ फीमेल्स ऑन स्क्रीन प्लेइंग पियानो, आशा भोसले जी ने एक फिल्म में गाया था, फिल्म नर्तकी में, वो ही फिल्म। फिर भाई भाई में गीता दत्त जी ने गाया था एक गाना, उसका भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिर नूर जहां जी को सुनाऊंगा और जगजीत कौर जी को भी मैं सुनाऊंगा। सो आपको पता चल गया कौन सी फिल्में होंगी, सुनते जाइएगा। मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB एलेक्सा गूगल होम एंड LikeAGold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड टूडे इट हैपन्स टू बी द 372nd डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स, जहां पे राज बद्दन जी आएंगे फ्रॉम 4 to 7, and Sandy Shah will be coming here with his drive time at 4 PM. Sunte rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Well, looking at yesterday's match, it was Spain who thrashed France by 2-0 in Dallas, Texas. Tonight is going to be England. And when you say England, you only hear throughout the country this particular sound. Yes. Not only that, it's going to be England versus Argentina from Atlanta, Georgia. And on Saturday, third place playoff will be in Miami. Yes, that will be Saturday, and 19 July, Sunday, will be the final. Wow, wow, getting exciting. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
0: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स.

0: One podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special. Like a radio.
1: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist, or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
2: बटन है नहीं दबाना
3: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
3: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
3: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
6: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाना
7: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
8: Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July.
7: Click RifkoTheatre.com for more info and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
9: Radio partner, Leica Radio.
10: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी
12: हमारे पति हमको छोड़ दिए
11: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
12: दिल तो टूट भी गया
11: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
13: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती
11: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT394
14: Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors urgently need support. Please help now. Go to dec.org.uk to donate. Thank you.
0: A true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
2: Radio Wally with the biggest hits for your weeknights on Laika Radio. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

0: नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
1: आपके सामने एक रेड बटन है,
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
3: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Lester Miller is back.
10: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
9: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
10: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
9: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
10: Arts Council England.
8: Lyco Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Lyco Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@lycomedia.co.uk. The sounds of love across the Midlands. This is Lyco Radio.

0: The sounds of love across the Midlands. The Love Sound. This is Leica Radio.
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, भूले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

0: साल थॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
3: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.